0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल पिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मल का नेदो सरदा रास्कुन पाट प्राक्टिस चेस्कुंटुन्नानु अंते अंते अंते रंडी।